उन्हें अपनी बरकतों, अपनी रहमतों और अपने फजल से माला माल फरमाता रहेगा। मुझसे आज के प्रोग्राम में ये ख़ास तौर पर सवाल भी किया गया है कि मुसलमान इस्लाम का नाम तो लेते हैं, मुसलमान इस्लाम की मोहब्बत का दावा तो करते हैं, मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा तो करते हैं, मगर अमल जो है वो बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ नज़र आता है। मेरे मुसलमान भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अज़ीज़ों, यकीनन ख़ास तौर पर आज के नौजवान बच्चे हों या बच्चियाँ, जब वो अपने बड़ों को इस्लाम का नाम लेते देखते हैं और फिर अमल उसके ख़िलाफ़ देखते हैं तो वो ऐसे सवालात उठाते हैं। मैं उन तमाम माँ बाप की खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहूँगा जिनकी गोद में, जिनके ज़ेरे साया उनकी औलादें तरबियत पा रही हैं, या वो इमाम हों या स्कूल के टीचर हों या कोई भी मुअल्लिम पढ़ाने वाला हो, उनके ज़ेरे तरबियत जो भी बच्चे हों, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इस्लाम की खूबसूरत जो तालीमात हैं वो अपने बच्चों के सामने, अपने जो तलबा हैं उनके सामने पेश भी करें, पढ़ाएं भी, मगर अमल जो है वो नहायत ज़रूरी है। बहरहाल किसी के बुरे अमल की वजह से इस्लाम की जो खूबसूरती है, इस्लाम के अंदर अल्लाह ताला ने जो सुकून, पीस और जो तस्कीन रखी है वो ख़त्म नहीं हो सकती। इस बुरे मुआशरे में अगर हज़ारों लोग अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे हैं, इस्लाम की तालीमात पर अमल नहीं कर रहे, तो उनका वबाल उन्हीं पर होगा, मगर वो लोग जो इस माहौल और माशरे में रहकर भी इस्लाम की तालीमात को अपनाते हैं, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को और हुजूर की तालीमात को अपनाते हैं, तो यकीनन अल्लाह ताला उन्हें बड़ी खुशियाँ, बड़ा सुकून और बड़ी बरकतें अता फरमाएगा। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात, हुजूर की शाने, हुजूर के मौजजात और प्यारे नबी के कमालात क़ुरान पाक में बयान भी फरमाए और हमें उनको बयान करने का हुक्म भी दिया, और साथ ही साथ हुजूर की ज़िंदगी और हुजूर के उस्वाए हसना और सुन्नत को अपनाने और उस पर अमल करने का हुक्म भी दिया। जो लोग अल्लाह ताला के इन तमाम अहकामात को मानेंगे, यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ेंगे, फिर हुजूर से मोहब्बत करेंगे, फिर प्यारे नबी के कमालात, अजमतें और शाने बयान करेंगे, सुनेंगे, और साथ ही साथ हुजूर की सुन्नत पर, उस्वाए हसना पर अमल करेंगे, तो ऐसे लोग यकीनन अल्लाह ताला के महबूब बंदे बन जाते हैं। औलियाए कामिलीन, बुज़ुर्गान दीन, सहाबाए कराम, उनके अंदर जहां नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी, अदब था, ताज़ीम थी, साथ ही साथ हुजूर की तालीमात पर अमल का जज्बा भी था, हुजूर की सुन्नत को अपनाने का जज्बा भी था, जब ये सारी चीज़ें
ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے تو پھر اسلام کا، دین کا خوبصورت گلدستہ بنتا ہے، اور وہ مرد مومن، وہ مسلمان مرد یا عورت ہو، امیر ہو یا غریب ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے کہ اس کے اندر اپنے پیارے نبی کی محبت بھی ہے، اس کے اندر اپنے پیارے نبی کی ادب اور تعظیم بھی ہے، اس کے اندر اپنے پیارے نبی کی سنت پر عمل اور اسوہ حسنہ کو اپنانے کا جذبہ بھی ہے۔ آج جبکہ شیطان نے ہم مسلمانوں کو دو دڑوں میں تقسیم کر دیا، ایک کو تو نبی پاک کی محبت کا دعوے دار بنا دیا مگر عمل کا جذبہ اس کے دل سے نکال دیا، دوسرے کو عمل کا جذبہ دے دیا مگر نبی پاک کی محبت، تعظیم اور ادب دلوں سے نکال دیا۔ لیکن میرے مسلمان بھائیو، جب تک یہ دونوں چیزیں، یعنی نبی پاک کا ادب، حضور کی تعظیم، حضور کی نعت، حضور کے کمالات، حضور کی تعریف کرنا، یہ ساری چیزیں اور پھر عمل، یہ جمع نہیں ہوگا، اس وقت تک کما حقہ نبی پاک کی بارگاہ سے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو کامیابی اور جو رحمت اور برکت کے ہم حقدار بن سکتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

0: अहले दिल गीत ये गाते हैं कि आप आते हैं, आंख रह रह के उठाते हैं कि आप आते हैं, चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है, यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं। अहबाब ज़ीवकार, 6 सितंबर बरोज इतवार, दिन 3 बजे, विक्लम सेंटर लिवरपूल में। हर साल की तरह इस मरतबा भी मुस्लिम रेडियो स्टेशन के जेर एहतमाम अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद होगा, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के लोग अपने अपने अंदाज में सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में हदिया अकीदत पेश करेंगे। आप अहबाब से गुजारिश है, खुद आए और अपनी फैमिली को साथ लेके आए, और दुआ है कि हमारी आइंदा आने वाली नस्लें भी इसी तरह सरकार की आमद का जश्न मनाती रहे। शुक्रिया।
1: Esselamu Aleyküm sayın dinleyiciler. 6 Eylül 2026'da Pazar günü bizler Whitlam Leisure Center'da Liverpool'da çok kültürlü mevlid kutlaması yapacağız. Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunu kutlamak için tüm Türk toplumu davetlidir. Bu kutlama için Whitlam Leisure Center kapıları saat 3'te açılacak ve saat 4'te program başlayacaktır. Böyle özel bir günde tüm Türk halkını aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Lütfen yerinizi ayırtmak için lütfen www.mevlidconcert.org.au'ya giriniz. Teşekkür ediyorum.